0: Welcome back. Let's turn to tonight's ground report, and it comes from Assam, where floodwaters are gradually receding, but it's exposing a trail of destruction that's left behind by the waters. Thousands of families dealing with damaged homes, lost livestock, destroyed livelihoods. As relief operations continue, the bigger challenge for lakhs of affected residents in Upper Assam is rebuilding the lives washed away by the floodwaters. Take a look.
1: The floodwaters may be receding in parts of Assam, but for thousands, the nightmare is far from over. Nowhere is that more evident than Nepali Khuti village in Nazira, near the Nagaland border, where entire villages were swallowed by floodwaters.
2: So, itna flood hai. Aadmi log jo ghar mein hai rehte hain. उनको भी मतलब ये गले तक पानी है किसी कैसे कहते छत का ऊपर से जा रहे
3: কিন্তু কমাইতে পানী হল পানীত আমি ইমান অসুবিধা হৈছে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই
4: আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত সাহাৰ্য যি পৰিমাণে পাব লাগে পোৱা নাই চৰকাৰী সাহাৰ্য ইয়াত পোৱাই নাই বুলিছে ইয়াত যুৱসংঘৰ যুৱকসকলে আহি ইয়াত যোগাৰ ধৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে এই পানীখিনিত মানে বাচন বৰ্তন ধুব লগা হৈছে
5: পিপল আৰ চেইং ডেট দে আৰ নট গেটিং দ্য ৰিলিফছ প্ৰপাৰলি ৰিলিফ আইটেমছ প্ৰপাৰলি হিয়াৰ এণ্ড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু give them assistance, to give them relief. There are old people also, there are youth also, and they are staying. You can see how they are staying at the roadside.
1: For families here, the loss goes far beyond their homes. In Jorhat's Alangmora area too, water levels have fallen. Exposing the scale of devastation. Many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials. According to the State Disaster Management Authority, as many as 6.54 lakh people remain affected across six cities. 66 people have lost their lives in this year's floods, while 810 villages remain inundated and nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged.
6: Slow.
1: Even as floodwaters gradually recede in parts of Upper Assam, relief operations continue.
7: So this time, the ban ka jo paristhiti hai, bahut hi bhayanak ek paristhiti hai, sthiti hai. Logon ka khane ke liye taras rahe hai log. तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ हम खुद भी और जो एनजीओ लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए लोगों को बसाने के लिए जो लोग आ रहा है कुछ खाने को लिए दे रहे हैं ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं जितना हो सके हम मदद कर रहे
1: But for survivors across Upper Assam, the immediate challenge is no longer escaping the floods. It is rebuilding lives that the waters have swept away. With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sip Sagar, Assam, Bureau Report, India Today.
0: And our thoughts and prayers with the people of Assam and Gujarat, the two worst affected flood states at the moment. Okay, let's turn to some happy news. And the happy news comes from the one and only Mirabai Chanu, the remarkable weightlifter who won a third consecutive Commonwealth gold and the first at this year's 2026 edition. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Naz, the weightlifter from Manipur spoke about what it takes to win a hat-trick of golds at the CWG. Listen in.
8: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Mira, sabse pehli cheez to jo mere dimag mein aati wo ye ki theek hai, gold medal hai, पर आपने शुरुआत की कॉमनवेल्थ गेम्स से 14 से 12 साल हो गए हैं और फिर भी आप ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है कुछ ही साल तक रह सकते हो इंजरीज भी बहुत आते हैं इतने साल तक आप टॉप पे रही क्या सीक्रेट है
6: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं, ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ। जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती, मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचूँ।
8: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है, वेट मेंटेन करते हो आप, पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है? क्या वो जर्सी
6: बिल्कुल
8: पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा?
6: बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक बाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है, उसी टाइम में मेरा कंपटीशन है, तो मैं नहीं खा सकती। मैं मेडल या कंपटीशन होने की बात ही इसके साथ में एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक मेरा पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं, तो मैं इन सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है।
0: And you can catch that full interview on Sports Today. Okay, let me leave you on that note with all that we've just packed about enough on the show. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.
9: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
12: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
11: Smartless.
13: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
11: Marketplace.
14: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
11: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
15: Sorry!

0: देश ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया, देश के नौजवानों ने, यूथ ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया और अब ये शुरुआत है। छात्रों के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को सॉरी बोलना पड़ेगा, देश के नौजवानों को अपोलोजाइज करना पड़ेगा। और जो 20 तारीख को नौजवानों के साथ हिंसा हुई, पुलिस ने हिंसा की, पैलेट गन्स चलाए, उस पर गृहमंत्री को भी जवाब देना होगा कि ये किसके आदेश से हुआ।
1: हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ है कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है।

0: 1995 पंजाब, जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी।
1: What exactly is the fear?
0: इस तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे।
1: A fear of a film.
0: पुलिस के नाम वापस ले लें, वरना मैं गार्ड दूंगा जिंदा।
1: A fear of a performance.
0: 25,000 लाशों के हिसाब के साथ। ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। मैं पीछे नहीं हट सकता।
1: Or fear of history being seen, heard and remembered.
0: नदियों के पानी का मसला हो तो या फिर 84 के दंगे।
1: Because when a film has to be taken down almost as soon as people begin watching it, you can't help but ask, what is that someone doesn't want the audience to see?
2: अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है।
1: Because Satluj wasn't just another OTT release.
3: फिर कुछ दिन बाद पुलिस साइटन शौक ले गए।
0: फिर
3: हीरो कभी वापस नहीं आए।
1: It became a conversation, a movement, and for many, a painful reminder of a chapter of history that refuses to fade away.
2: बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है।
1: It was a film that survived years of delays.
0: बात समझ के कह रहे हैं, छोड़ दे सब।
1: A film that refused to bow down to over 100 suggested cuts.
0: के लिए आगे आना पड़ेगा।
1: A film that finally found its audience. And now, barely a day after its release, it has been taken down from streaming in India until further notice. The streaming platform has stated that it is exploring legal options to restore the film for viewers in India. The decision has triggered outrage.
4: CP+ ऊपर वाला सब देख रहा। ग्रीन लैम लैमिनेट्स तारीफें दिखाई देंगी।

0: है वो 22 जुलाई को एंट्री की गई है, उसमें डेट 22 जुलाई का है। तो अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 20 जुलाई को जब ये इंसिडेंट हुआ तो दो दिन बाद 22 जुलाई को जनरल डायरी में एंट्री क्यों करवाई गई। लेकिन दावा यही है कि 55 शेल जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक और 15 इलेक्ट्रिक शेल छोड़े गए, एंटी राइट गन का इस्तेमाल प्रोटेस्टर पर हुआ जब वो संसद की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जी
1: तो ये प्रोटोकॉल में है अरविंद, क्या इस तरह का पैलेट गन्स का इस्तेमाल करना, एंटी रायट गन्स का इस्तेमाल करना, और ये प्रोटोकॉल में है? और जब आर्मरी इंचार्ज इस तरह के गन्स को इशू करते हैं तो वो किस ऑर्डर पर इशू करते हैं?
0: देखिए, अब सबसे पहले समझना होगा जो दिल्ली पुलिस का अपना ये दावा है कि जो प्रोटेस्ट था उसकी इजाजत जंतर मंतर की तरफ दी गई थी। संसद भवन, हमारे आप खुद भी इतने सालों से पॉलिटिकल कवर कर रही हैं, पार्लियामेंट के पास अगर कुछ भी होता है हड़कंप मच जाता है। अगर कोई बीते दिनों कई इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जब पार्लियामेंट के पास कुछ भी होता है, 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हो चुका है, तो वो पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। वहां पर प्रोटेस्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कई बैरिकेड्स तोड़े गए जिसका सीसीटीवी भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया और दिल्ली पुलिस का ये दावा है। अब पैलेट गन यूज करने के लिए किसने कहा, किसके ऑर्डर पर हुआ, क्या एसओपी है, इसकी डिटेल इंक्वायरी आरएएफ भी करवा रही है, दिल्ली पुलिस भी करवा रही है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तभी इस बारे में कुछ कहना होगा। हालांकि इंडिया टुडे ने कोशिश की दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से इस मसले पर बात करने की, उनका कहना है कि 21 तारीख को जब इस तरह की जानकारी आई थी तो दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन किया। अब जो जनरल डायरी की बात आ रही है वो 22 जुलाई का है, जबकि इंसिडेंट 20 जुलाई को हुआ था, तो दो दिन बाद ये जनरल डायरी क्यों और रिपोर्ट में मेंशन की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मारिया
1: जी, बिल्कुल आपने एक सही बोला कि जनरल डायरी में इसका मेंशन होता है दैट एंटी रायट गन्स वर यूज्ड ट्वाइस अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर ऑफ डीसीपी रैंक एंड द डॉक्यूमेंट्स आल्सो रिकॉर्ड दैट एन ऑफिशियल एंट्री रिगार्डिंग दिस एक्शन वाज मेड बट दैट डॉक्यूमेंट और द डायरी एंट्री हैपेंस टू डेज लेटर। The question then is that there is someone who is in charge of the armory. He issues this weapon and then makes an entry two days later. तो सवाल तो उठेगा ना दिल्ली पुलिस से?
0: बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की भी इंक्वायरी करा रही है, क्योंकि जब 20 तारीख को इस तरह का इंसिडेंट हुआ था तो तमाम जनरल डायरी जो भी मेंशन होता है, पुलिस बल प्रयोग करती है, टीयर गैस, हर एक्शन की जनरल डायरी मेंशन होती है। अब दिल्ली पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर दो दिन बाद ये जनरल डायरी को एंट्री कराई गई, दो दिन बाद, क्योंकि 20 जुलाई को ही सबसे ज्यादा बल प्रयोग किया गया था, उसके बाद छोटे मोटे इंसिडेंट हुए जिसमें टीयर गैस की सेल छोड़कर काबू किया गया। तो अब ये कहां से सामने आया दो दिन बाद, ये दिल्ली पुलिस की जांच में है। लेकिन हाँ, जनरल डायरी में आरएएफ की तरफ से मेंशन किया गया है कि एंटी राइट गन का इस्तेमाल किया गया, जिस पर दिल्ली पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
1: और ये सब डिटेल्स अरविंद उस वक्त आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट, रिमेंबर, इज हियरिंग अ बंच ऑफ पेटिशंस विथ रिगार्ड्स टू पुलिस एक्सेसेस, दैट वाज देयर पुलिस एक्सेस, क्लियरली इट वाज। नाउ द दिल्ली पुलिस, वुड यू से, इज इन डैमेज कंट्रोल नाउ अरविंद, दैट डीसीपी के ऑर्डर पर आरएएफ पर्सनल ने 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल्स, 15 इलेक्ट्रिक शेल्स एंड 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड्स ये इस्तेमाल किए हैं फ्रॉम एंटी रायट गन्स?
0: अब देखिए, दिल्ली पुलिस जाहिर सी बात है इस मामले में अपनी रिपोर्ट अपनी डिटेल अपनी इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर सी बात है तैयार कर रही होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी मालूम है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं, कई लोग इस बारे में दावा भी कर रहे हैं कि उनको पैलेट गन लगा, मल्टीपल लोग आ चुके हैं, एक नहीं मल्टीपल लोग, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी की होगी कि अगर फिलहाल तो वो डिनायल मोड में थे, 21 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उन्होंने, अब वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके पीछे उनके क्या दावे होंगे, क्या रिपोर्ट होगी वो सारी चीजें दिल्ली पुलिस तैयार करेगी। हालांकि अभी तक मीडिया से खास तौर से जब ये जनरल डायरी आई है इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से हमने मल्टीपल ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। इतना जरूर हमें जानकारी मिला है कि 22 जुलाई को ईडी ने एंट्री क्यों कराई गई जब 20 जुलाई को बल प्रयोग किया गया था।
1: ऑल राइट अरविंद, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग फॉर आवर व्यूअर्स। व्हाई डिड द दिल्ली पुलिस पुट आउट दैट ट्वीट इन विच दे सेड दैट दे डू नॉट हैव पैलेट गन्स, दैट दे डू नॉट हैव पैलेट, दैट नॉट पार्ट ऑफ द आर्मरी। Now that this diary entry has come to light, multiple questions being raised with regards to who gave that order. A DCP ranked officer gave that order. All that now is a subject of inquiry. The Rapid Action Force has already initiated an internal inquiry. Then why did the Delhi police deny it in the first place? A lot of questions that remain unanswered. A quick break and we continue to track the developments that are coming in also from the parliament.
2: Are watching India Today.
3: You ever heard the story of Harry? He was a legend around here. Until one afternoon, he left and never came back. Turns out, Harry went and made himself a website using Squarespace. Used Squarespace domains to buy artisanseatcushions.com. And he built a beautiful site with an online store to sell his artisan seat cushions. Now Harry's sitting on a fortune. And if our Harry can do it, anyone can. Build your business at squarespace.com. Use offer code EVERYTHING for 10% off your website or domain.
4: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
5: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
9: देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो सब झूठ ही है, सरकार ही झूठ की सरकार है और झूठ ही चल रहा है यहाँ।
10: आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए।
11: बिल्कुल सर। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर?
10: उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी की पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी।
12: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ये आम आदमी पार्टी उनका इस्तीफा मांग रही थी और बीजेपी वाले इनका इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो कहाँ जाएं? और ये जो इतना बड़ा नेक्सस है, हरजोत बैंस को भी इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो सब झूठ ही है, सरकार ही झूठ की सरकार है और झूठ ही चल रहा है यहाँ।
1: आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कल ही तो खत्म हुआ, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए।
2: बिल्कुल सर। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर?
1: उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी की पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samanta, and we shift our focus as the Met Department has issued red alert for Delhi. Torrential rains that lashed the national capital, waterlogging that has hit several low-lying areas and key arterial roads that are completely submerged. Janpath, in fact, is the road that is underwater. Panchkunya Road is also completely inundated. Connaught Place has been hit by severe waterlogging. Waterlogging that has also been witnessed near Noida Metro Station. Traffic snarls longing on National Highway 8, and commuters faced long delays where Delhi police teams have been deployed on the ground to clear up these roads. Public Works Department is carrying out relief operations, and the race is to clear waterlogged stretches especially. Take a look at these reports.
1: दिल्ली की जो बारिश है वो लोगों के लिए राहत का मुसीबत ज़्यादा लेकर के आती है. सुबह का वक्त जो लोग घर से दफ्तरों के लिए निकले उनको किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं, जहां आपको आउटर सर्कल पर इस वक्त पानी ही पानी चारों तरफ जो है वो नज़र आएगा. कई सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको पानी जो है वो नज़र आएगा जो कि अंदर तक घुस गया. फिलहाल उस पानी को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश जो है वो तमाम जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है. मॉप के जरिए उन पानी को बाहर निकाला जा रहा है. इसके अलावा मिंटो अंडरपास जो हर साल पानी में डूब जाया करता था, वो भी सुबह के वक्त जिस तरीके से बारिश हुई लगभग 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद मिंटो ब्रिज को भी जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मिंटो अंडरपास को जो है वो खोल दिया गया. ये तस्वीर है कनॉट प्लेस की. अगर आप देखेंगे कि बारिश के चलते, वाटर लॉगिंग के चलते, ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से धीमी हो गई है. अंडरपास चाहे वो ITI हो, लक्ष्मी नगर हो, विकास मार्ग हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हुई है, क्योंकि इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है. हालांकि PWD विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि जब एक सड़क पर लगभग 2 घंटे से ज़्यादा अगर पानी रुकता है तो वो वाटर लॉगिंग मानी जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस की. हालांकि दोनों तरफ अगर आप देखेंगे सड़क के एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ओर आपको पानी नज़र आएगा, जिसके कारण जो लोग यहाँ से निकलने अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे उनको तकरीबन आधे से एक घंटे जो है वो ट्रैफिक में जूझना जो है वो इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है.
2: So what you see are the images from Connaught Place. This is mid-circle, minutes of heavy downpour. And now you see the critical, the important market, the most busiest market in Connaught Place also submerging. The entire road, more than 200 meters, have gone inundated. Look at this, the length. 1 to 2 feet waterlogging in these areas. In fact, there is, I see, one vehicle, three-wheeler, has been totally, there's a breakdown. So these are the images that are coming from New Delhi area. Look at this, Connaught Place. That's minutes of the heavy downpour. The IMD that has issued earlier yellow alert, moderating to orange and now upgrading it to red alert. So day long, and look at this, the weather since this morning, heavy downpour, and now we see that within minutes the Connaught Place area have gone totally flooded. I'm not in a drainage or a river. This is main road, one of the busiest road. This has gone totally inundated. At Connaught Place with Amit, I'm Ashutosh Mishra for India Today.
0: And there you see the situation on the ground across key areas in the national capital and, of course, even the NCR, where red alert has been issued. But rescue operations are underway, especially to ensure that the traffic snarls clear and the low-lying areas that are particularly inundated where the water can be drained off. In fact, if you take a look at these pictures carefully, waterlogging that has been cleared from Connaught Place, outer circle where it was drained off within minutes, pumps that were deployed for swift water removal and quick response that was seen by the civic agencies. Traffic movement that has also begun to normalize and relief that is now being seen for the commuters in central Delhi. Let me take this to my colleague Sushant Mehra, who is now joining us live from CP. Sushant, what have you witnessed in the last 2 hours, especially that it started raining heavily and we also saw that report, and how it is slowly clearing up now?
1: शेषा, मैं तकरीबन यहाँ पर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचा था. जिस वक्त मैं पहुँचा था ये मिंटो अंडरपास था जो कि ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया, क्योंकि एक साइड वाटर लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी. लेकिन अगर आप तब तस्वीरें देखेंगे तो लगातार इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त बारिश हो रही है. उसके बाद भी ये जो मिंटो अंडरपास है उसमें ट्रैफिक आपको स्मूथ चलता हुआ नज़र आएगा, वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी. उसके बाद जैसे हम दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में पहुँचे, उसकी मैं तस्वीरें दिखा दूँ, लगभग 1:30 पर हमने यहाँ से रिपोर्ट की कि किस तरीके से ये आउटर सर्कल का पूरा जो हिस्सा था, पूरा पैच था, वो पानी से डूबा हुआ था. तमाम रेस्टोरेंट्स के अंदर पानी जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन महज 10 मिनट बाद ही जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार है उनकी तरफ से तैयारियां किस तरीके से थी उसका आप अंदाजा लगाइए कि मैं 10 से 15 मिनट में इस पूरी रोड पर जो घुटनों तक पानी था, इन दुकानों के अंदर तक पानी पहुंच गया था, वो पानी जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। ड्रेनेज के जरिए, पंप के जरिए इस पूरे इलाके के अंदर पानी इस वक्त जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये रेखा गुप्ता सरकार की शायद तैयारियां थी, क्योंकि ये वो हॉटस्पॉट हैं जो हर साल पानी में डूब जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे एक बार फिर से तेज़ बारिश जो है वो शुरू हुई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तमाम ये ड्रेनेज जो थे वो बंद पड़े थे, इसमें कचरा जो है वो फंसा हुआ था, उसको PWD विभाग की तरफ से निकाला गया। पंप लगाए गए हैं शेषम, अगर आप देखेंगे आगे की तरफ तो PWD विभाग के पंप आपको नज़र आएंगे, लेकिन अब इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ नज़र आएगा चलता हुआ। जब यहाँ पर हम 1:30 के आसपास पहुँचे थे तो ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग थी और यहाँ पर पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा था, लोग परेशान थे और अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक काफ़ी स्लो था। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी भी फ़िलहाल PWD के कर्मचारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फिलहाल अब इस पूरी रोड पर पानी जो है वो गायब नज़र आएगा, छूमंतर होता हुआ नज़र आया। ये आप समझिए कि किस तरीके से सरकार की तैयारी थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को परेशानी हो, क्योंकि जब वाटर लॉगिंग होती है तो कवरेज होती है, लोगों की परेशानी जब हम दिखाते हैं तो उस पर सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होती है और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि उसकी किरकिरी हो। फिलहाल अब देखिए किस तरीके से पूरे कनॉट प्लेस और उसके आसपास के तमाम हिस्सों में इस वक्त जो है वो पंप के ज़रिए सरकार की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं और इस इलाके में आपको पानी फिलहाल जो है वो अब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब बारिश हो रही थी उस वक्त यहाँ पर ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग थी, ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर रुक गया था, रफ्तार पूरी तरह से।
0: And there, Sushant, they're getting us the latest from CP, where it was inundated a while ago, but now the roads that are slowly clearing up. With that, it's time for us to slip into a very short commercial break. Within minutes from now, Parliament will resume. We'll cut across to the live proceedings. Do stay with us.
3: Sometimes in life, if you want to get to the truth, you have to look at the numbers. Greetings, naturopathic doctor Dennis Black here, dog lover and creator of Rough Greens. Unfortunately, 50% of all dogs over 10 years old will die of cancer, and the other 40 to 50% can suffer miserably from skin issues and joint problems. And that's widely attributed to your dog's diet. These are the numbers that inspired me to create Rough Greens. So here's the good news. With thousands of testimonials and five-star reviews every month, Rough Greens is now the number one all-natural dog supplement in America. And we've helped millions of dogs stay active and be healthy. And your pup could be next. You don't have to change your dog's food to improve your dog's health. Just add a scoop of Rough Greens. Fetch a free Jumpstart trial bag for your dog today. You just cover the shipping. Go to roughgreens.com. Use promo code NUMBERS. That's RUFFGreens.com, promo code NUMBERS. Or call us at 214-ROUGH-DOG.
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.

0: And first up, we'll get to details of Prime Minister Modi's high-level meeting that is set to take place this evening. Secretaries of key ministries are also to attend this meet that will be led by Prime Minister Narendra Modi. The big focus is on tensions that continue to prevail between Iran and the United States, where India will be reviewing global economic fallout. Finance Ministry will outline economic strategy. Industry Ministry is to present the supply chain roadmap to Prime Minister Narendra Modi and the focus primarily on economic stability and resilience. Major reforms that are likely to be discussed. The government will assess the impact on trade and industry, where the aim is to shield India from global disruptions. Remember that meeting that is all set to take place this evening, and those are the initial details coming in of how Prime Minister Narendra Modi will be leading this meeting, where the focus will be on the ongoing tension between Iran and US and its global impact, how India is possibly dealing with the impact that it has, where secretaries of key ministries will be attending this meeting. Let me take this to my colleague Aishwarya Paliwal, joining us on the broadcast. Aishwarya, do take us through the details of what time this meeting is to begin and what will be part of this meeting in terms of the discussion.
1: Well, you know, this is a very important meeting which will now take place at 5 o'clock, and the crux of the meeting will be what we are seeing happening in West Asia. So this is a crucial meeting. What's happening with regards to Iran and America, we are seeing how things are heating up with each passing day. Prime Minister Modi will actually call all the top ministries, and he will also speak with the secretaries. Now, this is a top-level meeting that is now taking place. Exactly what needs to be done? In fact, let me tell you, just a couple of months back, we did see how there were seven different groups that were being made. All these
0: Aishwarya, I'm having to interrupt you here, but cutting across to live proceedings in Parliament.
2: So, knowing this importance of this bill, now government is saying this important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill. Honourable Prime Minister is not there. Home Minister is not there.
3: राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे आपका विषय तो हाँ बताओ आप विषय क्या आपका
2: सर बिफोर स्टार्टिंग द बिल सदन वी नीड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट
3: पर रखे जाने वाले सदन पर पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर टू श्री जितिन प्रसाद
4: अध्यक्ष महोदय
3: टाइम घंटे एक मिनट संसदीय कार्य मंत्री जी आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना मैंने आप सुनिए ना ऐसे नहीं होता है मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता दें मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठ कर चर्चा कर लेना
4: वेणु जी एक मिनट
3: आप
4: एक मैं बताता हूँ सर
3: आपने
4: घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए आपने वहां से एक निर्देशन दिया था फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमारे चीफ व्हिप और डीएमके के उसके बाद एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे ये एग्रीमेंट हुआ सब थे हम लोग फिर उसके बाद नहीं फिर अभी मैंने एक मिनट आप मणिकम टेगोर को बुला लीजिए आपका चीफ व्हिप है
3: गरम संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते यहाँ मणिकम टेगोर था उनसे बात करके आए थे
4: और मैं
3: मणिकम टेगोर को हाँ हाँ मेरे को आपने कहा मुझे आपने कहा मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री
4: नहीं, ठीक है, मैं यहाँ मैं सदन में कहता हूँ, वेणुगोपाल जी, अगर आप दो घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और एक घंटा बढ़ाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है सरकार।
3: आप कितने आप बता दे कितने घंटे की बात करना चाहते हैं?
4: नहीं, इसलिए मैंने क्रम वर बोला, पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार है।
3: ठीक है, ओके ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए, प्लीज बैठ जाइए। अव्यवस्था जम गई, जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है, इसलिए सदन का सेंस बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, जितिन प्रसाद जी।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 3, श्री रामनाथ ठाकुर।
6: मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 4, श्री नित्यानंद राय।
7: मेघवाल जी,
3: अर्जुन मेघवाल जी।
8: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद।
3: आइटम नंबर 5, श्री एसपी सिंह बघेल।
9: मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 6, श्री बीएल वर्मा जी।
10: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र स्वागत पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 7, श्री बंडी संजय कुमार।
11: मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिख दस्तावेज सभापट पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 8, श्री पवित्रा मार्गेटा जी।
12: So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Minister of Textiles as per today's revised list of business.
3: Item number 9, Srimati K. Kanimoji. Aap sadan ke patal pe papers to nahi
13: people
3: Sri Rao Rajendra Singh ji. Chali koi baat nahi, ho jata hai. Item number 10,
14: sir,
3: aap rakhna chahte hain? Acha, Rao saab rakh dein.
14: आदरणीय अध्यक्ष,
3: राव साहब रख रहे, कोई बात नहीं।
14: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।
3: आइटम नंबर 10, श्री जितिन प्रसाद जी।
15: Respected sir, with your kind permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 195th report of the Standing Committee on Commerce on demand for grants 26-27, demand number 10, pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.
3: Item number 11, Sri Ramnath Thakur ji.
6: Mani Adhyak ji, Mahoday, main aapki anumati se aaj ki karyasuchi kram sankhya 11-1 में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान मांग संख्या 1 की अस्थायी समिति 7वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक सदन के पटल पर रखता हूँ।
3: आइटम नंबर 12, श्रीमती अनुप्रिया पटेल।
16: Honorable Speaker, sir, on behalf of my senior colleague, Sri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as the member of the All India Institute of Medical Sciences, Guwahati, Vice Shri Pradyut Borzoloi, resignation from Lok Sabha, with effect from 20th March 2026, subject to the other provisions of the said Act. Thank you.
3: प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में, हां वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं. आइटम नंबर 14, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026. माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? एक मिनट में बोल लूं, एक मिनट माननीय मंत्री जी. माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है. जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है. इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विशिष्टता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है. परीक्षा प्रणाली की विशिष्टता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है. इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है. पूरा देश चाहता है कि सभी माननीय सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें. कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे. इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए. माननीय मंत्री महोदय,
13: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए.
17: आप बोलो.
13: स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, public examinations prevention of unfair means act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. Earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of इंडियन पार्लियामेंट। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताजा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2009 में हो गया, 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, बाई चेंजिंग फिगर्स और डिजिट्स यू कैनॉट चेंज द रिकॉर्ड, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देन, 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। So, if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such, but the list is on. Okay, 2010. Okay, if that satisfies, if that satisfies you, you are welcome. You are welcome. You are welcome. 2010, B.Ed entrance examination, Uttar Pradesh. 2012. तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, आई कैन गो ऑन टिल यू आर सेटिएटेड। 2009 वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, सो देयरफॉर इट वाज रियलाइज्ड बाय दिस गवर्नमेंट दैट वी नीड टू हैव एन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन। उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। आई एम फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजी, आई एम फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली द क्रोनोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स, और इसलिए ये सोचा गया कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेकर के एक व्यापक सामूहिक व्यवस्था विधेयक लाया जाए। भारत सरकार में चार प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल, और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए कि 1992 में फर्स्ट टाइम देर वॉज अ रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन हेडेड बाई the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. Aur isliye for the first time in 2024 this bill was brought in. It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 24 and notified also the same month. Ab is विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine, sincere efforts, and also to ensure that their future is safe. और इससे पहले जैसे मैंने कहा there was no comprehensive law available to deal with such cases. इस बिल को और ये जो एक्ट लाया गया 2024 को it was made, as I said, it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned. It was made not bailable, non-compoundable. Such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment. अब उस बेल की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी उत्तर करने देने के समय भी रहेगा, लेकिन आप इस बात से तो सहमत होंगे कि हालिया जो घटनाक्रम रहा है उसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री स्वयं ने ये निर्णय लिया कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता. सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota mota is me, because then we have others to speak and finally I'll come out with the reply. Jo subsection 1 of section 10 tha, usme tha ki any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. Aaj ye jo amendment laya ja raha hai iske tahat the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of section subsection 2 of section 10 isme tha ki service provider, now who is service provider? Service provider also we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination. So service provider ke liye saza pehle bhi kafi mazboot thi. There was fine up to 1 crore in the 24 act, usko badha karke ab 5 crore kiya ja raha hai. Iske saath saath the recovery of the proportional cost of exam aur sabse mahatvapurn ke 2024 ke kanoon mein ye bhi likhit tha ke the provider will be barred from conducting any exam for the next 4 years. Us avadhi ko badha karke aaj is sanshodhan ke tahat 8 saal kiya ja raha hai. So any service provider found guilty of indulging in any kind of misappropriation or malpractice which has resulted in such consequences will be debarred from conducting an exam for the next or the subsequent 8 years. Isi tarah subsection 3 of section 10, director or senior management jo uske in charge honge, even they will not be spared. Kai baar aisa ho jata hai kanoon mein ke jo immediate handler hai usko punishment ho jati. So this act seeks to include all involved directly, indirectly, one way or the other, so that it sets a deterrent example also for others. So senior direct management persons or director ke liye, the imprisonment was 3 to 10 years in the earlier act. We are increasing it to 5 to 10 years. And the fine was up to 1 crore. It has been increased to 5 crore. And finally, the organized crime committers, where there is a mafia gang found, there is a nexus found, as we have experienced. I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab, it is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crore. और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द केसेस डीलिंग विद अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशंस. और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो चाहे वो सेंट्रल जैसी, बिकॉज this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even when the police RC is conducting. Unke liye section 12 A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. Ab usme bhi humne ek samay seema tay kar di hai. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. Or 2 mahine ke bhitar sari jaanch investigation mukammal ki jayegi, aur uske baad jo bhi trial court hoga, jo abhi is case mein is going to be a fast track special court, usme ye 3 mahine, yani jis din wardaat report hui hai उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 डेज, दैट टू if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. Iske saath hi saath isse jude jo aur jurm honge, jo aur crime honge, they will also not go unattended or scot free. Jo hamari bhartiya nyay samiti ke pravadhan hai uske antargat unka bhi nivaran karne ka pravadhan rahega. Aur isliye mera ye nivedan hai कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त ज़ाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी. इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ. उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हु आर नोन टू हैव एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन दीज डोमेन्स. मिस्टर नंदन निलेकानी, को फाउंडर इन्फोसिस, मिस्टर एस सोमनाथ, इसरो चीफ, टपन डेका एक्स DIB, मिस्टर वी कामाकोटी, डायरेक्टर IIT मद्रास चेन्नई, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। धन्यवाद।
3: श्री एन के प्रेमचंदन जी, आपने कोई संशोधन दिया है?
18: यस सर, आई हैव गिवन एन अमेंडमेंट टू द मोशन मूव्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल कंसर्निंग द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द कंट्री।

0: sense. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so okay. that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment.
1: Okay.
2: Shri Gaurav Gogoi.
3: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़े पीड़ा मन से बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं सर मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है सुधार नहीं लाना चाहती ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024 उस समय में भी एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा अब किसी का साहस नहीं होगा ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई जो इन्वेस्टिगेशन हुआ मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितने गंभीर है बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है ये है इनकी गंभीरता ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है संजीव मुखिया 11 महीने तक वो फरार था 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया उस मामले में उसको बेल मिल गया मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है वो बेल एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था उसको मई 7, 2025 को उसको बेल एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा मई 15, 2025 उसको बेल राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसने उसकी चोरी की उसको बेल तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ और अफसोस की बात है सर उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र

0: इंद्र प्रधान थे, और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया, तो आपके आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले ढाई महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की, आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर, आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, CBSE के OMR में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमिटी की बात करते हैं, तो दो साल पहले जो के राधा कृष्ण की जो हाई कमिटी थी उसका क्या हुआ? दो साल हाई कमिटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमिटी बनी, के राधा कृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो दो साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पहले पिछले कुछ दिनों में पता चला कि NTA के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि NTA की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, NTA की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया NTA में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए, हम जानना चाहते हैं। आपने NTA के DG को बदला और NTA के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? आपको NTA के DG पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको NTA के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, NTA के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वो मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, जिस NTA के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है, और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की, आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेंपर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आप आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक माँ ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा। और DU IIT JNU कहती है आप मत जाओ, छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले पीढ़ी, आने वाले चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे, अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का, आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका, आपकी जो नीति है वो सिर्फ एक उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा? आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है, आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए, आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सब ने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए, सब ने अपनी शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबके इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द का दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है, क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाए, 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और NCERB में सर आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज एनसीआरबी में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है, 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग बच्चों ने फैमिली, पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या होने की, लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फूले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले मैं जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ, जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फूले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने मार्ग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर, मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया, हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई की रात को आए, वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ, उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं मैं देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा, खून से लथपथ उसका चेहरा, उस समय भी पुलिस को लड़का रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। मैं अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का, जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये हैं बच्चे, ये है वो बच्चे जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर शरीर से, अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है, डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है। वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है, ये है, ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उस गुरुद्वारों को मैं के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी हमारी देश की खूबसूरत खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सबने बोला कि लोकतंत्र के साथ संविधान के पक्ष में आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
1: मेरा कहना है
0: सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
1: यहाँ पर बैठे हैं
0: सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, ये नौबत है, ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने कहा, जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत जीत याद दिलाया, दिनकर किया, दिनकर का, अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म है तो दो बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमने देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।
1: बांसुरी स्वराज,
2: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, इसका असर तो उस उनींदी माँ पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है, उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, और इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। स्पीकर सर, अ लॉ इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट, it needs to evolve with the challenges that it faces, and in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual, because this is one ritual where under the same clock the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. अध्यक्ष जी, आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे, उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर देगा, और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाईकोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूँ। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। एंड देयरफॉर स्पीकर सर, दिस अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स मेरिट, इट प्रिजर्व्स फेयरनेस and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए, 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, IITs अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं, IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं, फंक्शनिंग एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई है। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। एज फार एज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट स्टेटिस्टिक्स आर कंसर्न, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है। और हाँ, SC स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। ST स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए, ईथ पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है, CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया, और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, सदन में पिछले दो वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर ये इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट अबाउटरी, दिस इज नॉट अबाउट वॉट अबाउटरी, बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमिटी ने 2010 में रिइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखरना था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन। बट व्हाइल नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक लॉ, अ वेरी रोबस्ट लॉ व्हिच टुडे इज बीइंग इवन मोर फॉर्मिडेबल, ऑल दैट द ऑपोजिशन डिड वाज चेज पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म। अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है। और इसीलिए मैं यहां से, इस सदन के पटल से, हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्री अखिलेश यादव जी,
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए। और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा जान रहे हैं, और जितना विपक्ष के लोग नजर रखेंगे मैं समझता हूं उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था, और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें। और बिंदु दूसरे अलग हैं, जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पर स्वीकार किया है। लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार, जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए, ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग किया उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया, जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कि झुकाने वाला चाहिए सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया, और केवल गिनती के एक दो पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी मां बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे, और 5 × 20 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी, और अध्यक्ष महोदय जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए, किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई, 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ, तीन बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें।
4: आउटसोर्स सरकार है,
3: जो सबसे विश्वसनीय संस्था है उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारी को रखा हुआ है, किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी को ये ना कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने, जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय, जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश यही है कि शिक्षा परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़े लिखें आगे बढ़ें। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वहीं किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1,00,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं, और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं, और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चियों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें, कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी? और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है, और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी, और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं, और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आप आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको तो संकट से बचा लिया, और अगर
5: अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता

0: അദ്ദേഹ മോദേ അദ്ദേഹ മോദേ അദ്ദേഹ മോദേ മേ എമർജൻസി കോ നീ ദേഖാ ഹൂ ലേക്കിൻ എമർജൻസി മേ ക്യാ ക്യാ ഹുവാ ഹൈ വോ അഭി ദില്ലി കി രാജധാനി മേ ഭി ദേഖ്നെ കോ മിൽ ഗയാ ഹൈ ആസൂ കേ ഗ്യാസ് കേ ഗോലേ ഓർ ലക്ഡി മേ ലഗാ ഹുവാ കുച്ച് കീൽ കാ ഓർ കാട്ടേ കി ചീസേ ഉസ് സമയ കറന്റ് നീ ലഗായാ ജാതാ താ ഇസ് ബാർ കറന്റ് ലഗായാ ഗയാ ഹൈ तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला कम नहीं है इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग और याद करिए अध्यक्ष महोदय अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ कानून से नहीं नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी सवाल कानून का नहीं है आपकी नीयत साफ नहीं है और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं आज मौका नहीं है लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं और चढ़ावा ही नहीं जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है गुप्त दान और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है महापाप की श्रेणी में आता है
1: अखिलेश जी बिल पे
0: और अध्यक्ष महोदय आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका
1: श्री अभिषेक बनर्जी
2: थैंक यू सर आई राइज हियर टुडे टू स्पीक ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 वी सपोर्ट दिस बिल But I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party
3: आप इनको बोलिए
1: 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है अरे शर्म करो
3: इसको बंद कराइए सरसा होने दीजिए
1: सर एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स
3: बैठिए
1: सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है
4: सभी सैन्य मैदान है
1: सर बिल पे
4: सभी सैन्य मैदान है आप सब लोग बैठिए प्लीज सभी सैन्य मैदान
1: सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर ये दिख रहा है एवरी स्टूडेंट डिजर्व द अश्योरेंस दैट एग्जामिनेशन शुड बी फेयर एवरी पेरेंट deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that million students have lost. That is the question before this August House today, sir. But let me also say this. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, After the failure exploded across

0: पॉलिसी बाजार हर फैमिली होगी इंश्योर्ड।
1: Hello and welcome. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. This is 5 Live. On the program today, three stories that have caught our imagination, and I'm sure it has yours as well. The pellet gun row. What is this chronology that the Delhi government seems to be following? First, they disowned the story. Now they've owned the story. So we look at the timeline. What happened when? What statements were made when? And then ultimately, where are we now? That's story number one. Story number two. All you people doom scrolling your way. Well, government has made an Insta push. They have asked ministers, cabinet ministers and several other BJP leaders to make a more conscious effort to be on Instagram because that's where Gen Z speaks. That's where Gen Z expresses. But how's that going? So much so that in Parliament today, from micro-clapping to all young BJP MPs speaking on the matter, the government is making a consolidated effort to say that they are young, they are relevant, and they listen to Gen Z. Is that really cutting ice with people? We'll try and decode that. And then there is story number three. It really broke my heart. When Irfan spoke, the nation cried. Right from his first interview to Lallan Top to now, when he's got a wee line of politicians talking to him, we'll decode him. But first up, I'm cutting across to Parliament, where Priyanka Gandhi Vadra is speaking.
2: कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे। पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए, जो ICU में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। सुन लीजिए,
3: सुन लीजिए,
2: सुनिए। किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते।
3: बिल्कुल,
2: आप संसद में बैठे हैं,
3: निशिकांत जी आप बना रहे हो।
2: जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो, उसने ICU के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए, उसने हमसे पूछा, किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहां खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस मां की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से मैं गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस मां की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की, क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए, उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन, यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब, इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है, उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे, देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है, ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है,
4: अखबार में नहीं, मेरा अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहां से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहां से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर एसेसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
5: मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी
2: जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्कीज बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी।
6: स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको।
1: Your screens right now. You have the Parliament, the Lok Sabha there discussing the anti-NEET bill. Priyanka Gandhi Vadra started speaking roughly around 5 o'clock this evening. And what we've been hearing is her comments. The latest cause of uproar, which, by the way, has been muted from Sansar TV now. We don't know why. Okay, it's back up. It's largely got to do because Priyanka Gandhi Vadra raised the issue of the current education minister as well in the country.
5: 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध महानहारी या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। ये व्यवस्था है,
7: हाउस मैन, दिस सेम हाउस ऑनरेबल श्रीकांत दुबे टोल्ड स्टिल दैट इज इन द रिकॉर्ड अबाउट इंदिरा गांधी जी, स्टिल दैट इज द रिकॉर्ड, स्टिल दैट इज द रिकॉर्ड। सर यू आर नॉट रिमूव्ड सर,
5: बोलो आप भी बोल लो
6: सर। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट कर देने तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं, आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक।
5: आसन पर होता हूँ, जो मैं व्यवस्था देता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूँ। मैं जब आसन पे होता हूँ बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, चलिए चलिए
8: 114
5: प्लीज प्लीज चाहिए।
9: सर सर सर, प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक,
8: 114
9: में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए।
10: ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर, बिल पे
2: सर हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल सर। सर, रिटन बाय रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, आई विल ऑथेंटिकेट यूजिंग दिस सर।
5: माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें।
2: सर, अगर जोशी जी अपने बयान का खंडन कर रहे हैं,
5: इस पर ही चर्चा होगी,
2: आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं?
5: माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है, आप नो, आप बोलो तो विधेयक पर बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे, प्लीज छोड़िए इस विषय को, छोड़िए।
2: आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है, इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए, वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है, और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
9: अरे बात
2: फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है, आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए।
5: वो आपने भी चुनाव लड़ा।
2: सर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर करके भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए कहिए, बोलिए बोलिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी, किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है। महोदय, अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म।
9: जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा।
11: तेजस्वी बुला लो।
10: अच्छा मैं
5: तेजस्वी सूर्या
12: धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद के ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हु इज गोइंग टू फिक्स द सिस्टम फॉर द फ्यूचर, एंड ही नोस दैट दिस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप इज ट्राइंग टू फिक्स द सिस्टम वंस एंड फॉर ऑल फॉर द बेटर फॉर हिज फ्यूचर। अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं, पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते। अध्यक्ष जी, उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है, और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम न पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 steps. First, to ensure justice. केसेस दर्ज हो गया, CBI जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। This was to ensure justice. Second, re-NEET हमने की, and we did it in a record time, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो, re-NEET was conducted. This was the primary responsibility of the government, and we delivered on that. Second, and third and most important, अध्यक्ष जी, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. Pradhan Mantri ji, isliye do bade kadam uthaye. One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations to in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. Adhyaksh ji, Priyanka ji, abhi tak bahut vistar mein baat ki. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill Prevention of Malpractices Bill.
13: To take your seat.
12: Why did you not pass the bill?
13: Members, those who are standing,
12: why did that bill fail?
13: Just take your seat.
12: If at all you were so concerned about the future of young people in 2010, you should have passed this.

0: एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. ऑल ऑफ दीज वाइज प्रियंका जी आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाई हैज देयर बीन नो कन्विक्शन. प्रियंका जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कन्विक्शन इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन 70 इयर्स में, इन 70 इयर्स ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ स्पेशल लॉ टू क्रिमिनलाइज वॉज पास्ड इन 24 एंड इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड नाउ इन 26. अध्यक्ष जी, बट आई वॉन्ट टू टेक दिस डिबेट फर्दर. आई वॉन्ट टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ दिस डिबेट. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. आई वॉन्ट टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन दैट मेनी स्टूडेंट्स आस्क एवरी डे, व्हाई इज आर एजुकेशन सिस्टम लाइक दिस टूडे. एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम. द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम. जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. फिक्सिंग द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली फिक्सिंग द सोर्स कोड. एंड फिक्सिंग द सोर्स कोड इज रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम. हाउ इज आर एजुकेशन सिस्टम टूडे? 16-17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं अध्यक्ष जी, वॉट डू दे फेस? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है, 7th-8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th-12th में हर दिन गांव गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिट्री या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं, 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं, सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक इस बार, अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है, जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा,
1: रेपिस्ट्स, दैट्स द मोस्ट फिल्थी टाइप ऑफ मैन. देयर कैन बी नो फिल्थियर मैन देन समबडी हु सेज दैट रेपिस्ट नीड प्रोटेक्शन. दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing.
2: Thank you, sir. Thank you, sir. Demanding actions.
3: Ajit.
4: There from Rahul Gandhi to Priyanka Gandhi, upping the ante against the newly appointed education minister Prahlad Joshi, both going back to comments that apparently Prahlad Joshi made. Let's listen.
5: You're a woman. You know what women have to face and deal with in society in general, their security, everything. It's a very wrong message.
6: Authenticate भी किया आपने दोबारा?
5: I'm going to अभी कर रही हूँ authenticate. मैंने भेज दिया.
6: वीडियो
5: भी है उस समय का.
6: चेयर को मैम डॉक्यूमेंट भी दिए थे.
5: जी हाँ, मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी.
4: Is of Priyanka Gandhi, because what she said about Prahlad Joshi during her time of speech in the parliament has now created quite a furore.

0: And let's begin with the big highlights, headlines emerging from the parliament debate that's underway, marathon session that's on right now. But we want to focus on the big political war of words that's broken out between the Congress and the central government, all courtesy Priyanka Gandhi in the Lok Sabha in her speech, lashing out at the new education minister, Prahlad Joshi. Her comment has been expunged, but it's led to all kinds of uproar. Prahlad Joshi demanding an apology, the centre claiming character assassination, but that's not where it stops. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi then came out of parliament and repeated those allegations. So much so that Rahul Gandhi even referred to Prahlad Joshi as a filthy man. It's all going down in parliament. Remember that in all likelihood, Rahul Gandhi will be speaking in the Lok Sabha tomorrow during the marathon discussion that is expected to continue tomorrow as well. And so it's clear that the Congress has set their eyes on the next target, which is going to be Prahlad Joshi. Listen in to exactly what the Congress's charges against the new education minister and how the government has chosen to respond.
1: And so many girls are protesting. They've been beaten. They've been the BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
2: Archana?
1: Quite amazing.
3: They're saying at a time when they are saying that they are bringing in women's rights, women's reservations, and they're putting women in the forefront. What a way is this of putting women in the forefront? You're a woman, you're a woman. You know what women have to face and deal with in society in general, their security, everything. It's a very wrong message.
4: प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक
5: 114
4: में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए
6: लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की कैरेक्टर एसेसिनेशन है एक तरीके से संसद में और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है वो पहली बार चुन के आए हैं मगर उनके पार्टी में सीनियर है जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से
0: Let me bring in Moushami Singh for more details of what just transpired in Parliament. Moushami, very clearly the Congress now has decided their next target is going to be Prahlad Joshi. And Priyanka Gandhi saying now that she will submit all necessary details to back the claim that she made in the House.
7: That's right. You know, Priyanka Gandhi, you know, even coming out at Makar Dwar saying, watching a video where Prahlad Joshi's comment is there and saying that I will authenticate it. On the floor of the house. But the speaker, Akshita, we heard the speaker say that particular statement has been expunged. We'll have to wait and see as the expunged list comes out in the evening, whether it's right there. But clearly, you know, Priyanka Gandhi upping the ante to the extent that Kiran Rijiju said that Rahul Gandhi's speech perhaps was read by Priyanka Gandhi, hinting at the kind of furor it had raised on the floor of the House with all the Treasury bench MPs, up in arms and opposition Congress and Samajwadi Party MPs also, you know, sloganeering on the other side when Priyanka Gandhi wasn't being allowed to speak or her speech was halted. So right. Clearly a lot of fireworks we saw on the first day of the discussion.
0: No, so Moshmi, we are hearing that Rahul Gandhi could be speaking tomorrow. Has the Congress decided that they're going to now go all out against Prahlad Joshi? Is that the next target?
7: Sorry, you had asked that question. And clearly, you know, with the MP from Dharwar, he's been a minister earlier. He's got an RSS background. And Rahul Gandhi has been gunning for saffronization of education and the alleged entrenchment of RSS in universities and colleges. And so this is a fresh reaping ground as far as political attacks are concerned for Rahul Gandhi. It will be quite a frontal attack on Prahlad Joshi. But I think his attack will be directed more and solely focused on Amit Shah, the Home Minister. Rahul Gandhi is very clear that he is going to demand some answers. We've seen that earlier also, and I get an inkling that tomorrow will be a war of words where we'll see a lot of mention of the Prime Minister and the Home Minister in his speech.
0: All right, let's see what exactly Rahul Gandhi will have to say. Coming outside Parliament right after Priyanka Gandhi's speech, Rahul Gandhi attacked Prahlad Joshi, saying he's a filthy man and he's been made the new Education Minister. But let me get your highlights of what exactly Priyanka Gandhi said in the Lok Sabha just a few moments ago.
3: मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की उन पर लाठियां बरसाने की उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी क्या वे आतंकवादी थे क्या आतंकवादी हैं टेररिस्ट हैं हाँ कांग्रेस बोल रही है हाँ कांग्रेस बोल रही है जवाब दीजिए कांग्रेस बोल रही है जवाब मांग रही है जवाब दीजिए किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए किसने ऑर्डर दिया आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय किसने ऑर्डर दिया प्रधानमंत्री जी ने दिया गृह मंत्री जी ने दिया जवाब देंगे पूरा देश पूछ रहा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है पूरा देश पूछ रहा है अध्यक्ष महोदय देश के माता पिता पूछ रहे हैं छात्र पूछ रहे हैं अध्यापक पूछ रहे हैं पूरा देश आज ये पूछ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस कैपिटेशन फीस ट्यूशन फीस कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं लोन लेने पड़ते हैं सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए मगर एक भी दोषी एक भी माफिया को सजा नहीं आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी आपने देखा है आपने आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।
0: And the marathon Lok Sabha debate will continue right up until 10 p.m. tonight. So that's an 8-hour discussion today alone on the anti-paper leak bill. The debate will continue till 10 p.m. Remember, it started at 2 this afternoon. And in all, it's expected that with another additional 2 hours, the discussion will continue well into tomorrow as well. And the voting will happen on the bill tomorrow. But with the opposition also on board and clearly all issues ironed out as far as dialogue discussion is concerned in Parliament, the government has got the opposition on board. And so now you're going to see a marathon discussion take place right up till 10 p.m. in Lok Sabha. The opposition also has now fielded speakers, as we've shown you some of the highlights of what Priyanka Gandhi has also said. This will continue for the next 4 hours, right up till 10 p.m. The debate, the discussion will continue in the Lok Sabha on this particular exam amendment bill. So let's see really what the opposition puts forth in their points of view, because already there's been a huge controversy, as you've seen, over Priyanka Gandhi's statements in the House. What we're hearing from our sources is that Rahul Gandhi is going to be speaking in the Lok Sabha tomorrow. So while 8 hours of discussion will happen today, 2 to 10 p.m., you will see tomorrow another round two of the discussion in the Lok Sabha, along with the voting on the bill. But let me get you also some of the other highlights really of the discussion that's happened today. Here's a look at all the other reactions, including the moment that this bill was tabled by MOSPMO Jitendra Singh, who spoke on behalf of the government on exactly why this bill is the need of the hour.
2: तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका प्रधानमंत्री जी ने वीडियो के माध्यम से जिक्र भी किया, टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस वी विल हैव स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड ओनली फॉर द केसेस डीलिंग विद अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशंस। और चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल जैसी, बिकॉज दिस बिल एंड द अर्लियर बिल आल्सो एंटाइटल्स द गवर्नमेंट और द ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू पास दिस ऑन टू एनी सेंट्रल एजेंसी और टू स्पेशल टास्क फोर्स और इवन वे द पुलिस पर्सी इज कंडक्टिंग, उनके लिए सेक्शन 12 ए हैज बीन एडेड टू दिस अर्लियर बिल विच प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, दी इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ सेंट्रल एजेंसी और अ स्पेशल टास्क फोर्स, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट।
8: 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले ढाई महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की, आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर।
9: अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है।
10: कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया।
11: टुडे वी सपोर्ट दिस बिल बिकॉज दिस अमेंडमेंट बिकॉज स्टूडेंट्स डिजर्व एवरी पॉसिबल प्रोटेक्शन, बट वी रिफ्यूज टू अलाउ दिस गवर्नमेंट टू कन्वर्ट लेजिस्लेशन इनटू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस। दिस बिल cannot wash away 12 years of incompetence and failure. It cannot erase cancelled examinations. It cannot erase broken dreams. It cannot erase the humiliation faced by lakhs of young Indians. And it certainly cannot erase the images of students who came seeking justice and were met with barricades and pellet guns instead of love and compassion. Governments are not remembered by the speeches they make. They are remembered by the generation they leave behind. The government promised Amrit Kal. Instead, millions of students today has experienced anxiety Kal. They promised opportunity, but the students received uncertainty. They promised merit, but they delivered manipulation. They promised confidence, but what the students inherited is fear. Young India will remember who stood with them today. Young India will also remember who questioned them. And young India will remember who tries to suppress their voice instead of protecting their dreams.
0: Okay, let's move on and again focus on what's been happening in the last few days between the CJP and the government. Yes, there was a deal that was brokered of sorts, which meant that the protest came to an end. But there was some friction over one of the points of agreement. What was that? The fact that the government said they would withdraw all FIRs against the protesters, and not just in Delhi, but across the country. Now, the CJP then started raising questions on whether this was actually followed, that none of the cases have been withdrawn. And right after that, the government, true to its word, in Assam, in Bihar, and the latest in Maharashtra, has gone ahead and withdrawn FIRs against the protesters. Let's get you all of those details.
12: A month-long protest that witnessed violence, a police crackdown, and eventually came to an end with the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The breakthrough came after the government agreed to accept the key demands of the CJP. One of the major demands was the withdrawal of cases filed against protesters. But that promise soon turned into a stumbling block. After the third round of talks with the CJP, the government agreed that no action would be taken against the protesters.
13: कोई भी एक्शन FIR ना हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
12: But the CJP accused the Modi government of reneging on its promise. It warned that it would return to the streets if the agreement was not honored.
14: जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी।
12: A Tuesday deadline was set, but the talks happened just in time, again at midnight.
15: जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए।
16: असम के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें,
12: द असम गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड विथड्रॉ केसेस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स एंड रिलीज दोज हु हैड बीन डिटेन्ड। The Bihar government followed with a similar announcement. In Mumbai, NCP SP leader Rohit Pawar met the Mumbai Police Commissioner and demanded the withdrawal of cases registered against the protesters.
17: जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए। इसीलिए कल डीजी और आज सीपी उनसे मिलके उनको बताया, विनती किया कि ये जो हैरेसमेंट चल रहा है बच्चों का वो बंद करो।
12: द की क्वेश्चन इज वेदर द सीजेपी एंड प्रोटेस्टर्स विल बी कन्विंस्ड एंड नॉट बी फोर्स्ड टू लॉन्च अनदर राउंड ऑफ एजिटेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।
0: And on the issue of protesters being let off, FIRs being withdrawn, it came up in the Supreme Court too. And the Supreme Court in its interim order made it very clear that they will not agree to a uniform lifting of all FIRs against protesters. Blanket immunity is something they said no to. The CJP has now rejected the Supreme Court's order, saying that the government has given us an assurance that cases that are filed against protesters would be withdrawn. They're now demanding a written assurance on the same. And this comes after the Supreme Court made it very clear that there will be no blanket immunity for protesters. They've directed the release of those with no criminal record. But the top court also went ahead and said that not everyone can be let off. Notices have been issued to the governments of Maharashtra, Bihar, Assam, West Bengal, Delhi and Uttar Pradesh. In that list, as I mentioned, Maharashtra, Bihar and Assam have already withdrawn FIRs. The Supreme Court has also ordered that no coercive action be taken against protesters till the next hearing. But even so, the CJP remains firm, saying it will accept nothing short of the release of all detainees.
15: दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर के तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या।
18: देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोग कुछ डिमांड्स थी, हमारा जो की एक जो की डिमांड था वो था कि FIR सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा।
0: We're quickly switching back to a parliament news break. Pralhad Joshi, Union Minister, the new Education Minister, is now meeting Lok Sabha Speaker Om Birla. This after Priyanka Gandhi in the House had taken him on had accused him of speaking out for rapists and targeted him in the house. Pralhad Joshi almost immediately lashed out at Priyanka Gandhi, demanding an apology, saying that this is defamation. The government has maintained that this is character assassination of a new education minister. But that hasn't stopped the Gandhis from stepping out of parliament and making similar comments, with Rahul Gandhi even calling Pralhad Joshi a filthy man. Amid all of this, the new education minister is currently meeting with the speaker, no doubt seeking action, course of action against Priyanka Gandhi. Because even in the house, Pralhad Joshi, speaking right after Priyanka Gandhi, demanded action against her, demanded an apology, and even said she should be expelled for the comment she's made. Remember that the comment she made in the Lok Sabha has been expunged, but the Gandhis stepped out of parliament and made similar remarks about Pralhad Joshi. Priyanka Gandhi has also said that she will follow the necessary rules. She will go ahead and submit details, evidence of the comments she's made to back her comments essentially in parliament. So this is a political showdown that is going to continue to escalate. Okay, so with that, I'm slipping into a short break here on Super 6. Coming up on the other side, we'll switch over to what's happening in the south. In the southern states, the big headline emerging is the Meketatu face-off between Karnataka and Tamil Nadu. The water wars are back. We'll get you the latest updates.

0: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: जो 24 में बिल लेकर के आए थे उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया ये आप बता देना मंत्री जी। आप आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको तो संकट से बचा लिया। और अगर
2: अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए।
1: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
3: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
4: आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है वो अच्छा आप बता दीजिए
5: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है सूखे गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें उस समय करंट नहीं लगाया जाता था इस बार करंट लगाया गया तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला कम नहीं है इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग और याद करिए अध्यक्ष महोदय अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कानून से नहीं नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी सवाल कानून का नहीं है आपकी नीयत साफ नहीं है और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं आज मौका नहीं है लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है। जवाब मांग रही है। जवाब दीजिए। जवाब देंगे किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: है सुधार नहीं लाना चाहते, यह सिर्फ एक देखावा का बिल है, क्योंकि यह बिल एक संशोधन बिल है। आज से दो साल पहले यह बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा, और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े डंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं।

0: काम आ जाता है। तो 5-10 लाख रुपए में आपको पता है बहुत कम पैसे में बंदा एम्स में जाएगा या किसी सरकारी संस्थान में जाके एमबीबीएस की तैयारी करेगा और बहुत कम पैसे में वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगा। और उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे कि वो प्राइवेट में 3 करोड़ रुपए में भी होगा ना तो उसे नहीं मिलेगी। यहाँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल भी होता रहता है और थ्योरी भी बनती रहेगी उसकी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसको नीट सपने हैं लोगों के, एक हर किसी के, मुझे मिडिल क्लास बंदा है 30-40 हज़ार रुपये कमाता है तो उसके खर्चे भी हैं, वो सपने देखता है। अगर उसका बच्चा अगर अच्छा कर गया 10वीं में, अगर उन्हें साइंस से पढ़ा है और वो आगे नीट की तैयारी करता है, उसका नंबर आ जाता है तो फिर वो लीकेज हो जाए तो ये तो बड़ा अनर्थ है। किसी के सपने और उम्मीद मार रहे हो, फिर उसमें 20 बच्चों की जाने गई। हमने कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं एनडीटीवी आगे कहा ये तो दहशतगर्दों की भी टीम है, ये WW आईसा वालों को WW कहते हैं, ऐसे भाई वालों को WW कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये आपके देश के नौजवान छात्र हैं, इस देश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। आप अपनी वैचारिक मतभेद में आप इतनी हिंसात्मक बात है ये कि टुकड़े टुकड़े कहेंगे और ये दहशतगर्दों के बीच में, ये हिंसात्मक हिंसा फैलाने वाली बात है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आपके करोड़ों समर्थक है, जब उनमें ये संदेश जाएगा कि जंतर मंतर पे तो दहशतगर्द बैठे हैं, देश देश विरोधी बैठे हैं, तो वो लोग हिंसा करेंगे। ऐसी लोग एक साफ सुथरे लोकतंत्र में असहमति हो सकती है लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। आप तो खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आपको अहिंसा परम धर्म पे विश्वास ही नहीं है जो भगवान महावीर ने दिया है, गांधी ने दिया है।
1: आपके लिए लोकतंत्र क्या मतलब?
0: लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के विचार गलत फहमियों को दूर करके एक साथ बैठते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, लोगों के विचारों से शासन चलता है, लोगों के विचारों से तो सब कुछ होता है।
1: फिर नीट नीट पर भी सवाल का जवाब देना होगा कि इतने पेपर लीक क्यों होते हैं इस देश में,
0: हर चीज का सवाल का सब। मैं देखिए सर, हम सरकार जो सरकार लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपको चुनती है आपके अपने देश की और लोगों की बेहतराई के लिए। जनता आपको किस लिए चुनती है कि देश हित में काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, देश लोगों से ही तो बनेगा।
1: आप किस स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं?
0: मैं स्कूल नहीं गया सर।
1: स्कूल नहीं गया तो नहीं। ये कहाँ ये सब सीखा कि लोकतंत्र की जादू, लोकतंत्र में ताकत क्या है, इतनी अच्छी तरह से बोल कहाँ लेते हैं?
0: नहीं लोकतंत्र देखिए, जब हम जब मैं कहता
1: और आप तो हमसे डिबेट अच्छा करते हैं, आपने मेरे मेरी नौकरी लेनी चाहिए।
0: नहीं नहीं सर,
1: आपने एंकरिंग करनी चाहिए।
0: नहीं मैं एंकरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जब कहता हूँ कि
1: तो आप सभी पार्टी स्पोक्स पर्सन से अच्छे।
0: देखिए सर, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को संविधान दिया तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही गई, सभी के जीवन में समानता होनी चाहिए हर चीज को लेके, किसी एक चीज को लेके नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके संसाधनों को लेके। जब हम देखते हैं आज देखते हैं तो बड़ी आबादी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो हम कहेंगे, हम सवाल करेंगे, आप ही तो 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे, फिर अगर सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो हम पूछेंगे, तो फिर आप कुछ भी कहिए, हम पूछेंगे कि देश में हर साल NCERB का डाटा है 2024 का, 1,70,746 मौतें हुई हैं, प्रतिदिन 467, हर मिनट 3, और उनमें सबसे बड़ा नंबर है श्रमिकों का था, दिहाड़ी मजदूरों का था। हम बार बार पूछेंगे, आप इंटरनेशनल कहिए या कुछ कहिए, 19, 20, 21 में NCERB का डाटा है, 13,13,000 महिलाएं गायब हुई हैं, आपकी कमीज का बटन भी खो जाए तो वो मिल जाता है और यहाँ जिंदे आदमी गायब हो गए, तो हम पूछेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे आपसे। ये लोकतंत्र है कि आपको सवालों का जवाब देना होगा, आप सवालों से भाग नहीं सकते।
1: तो कोई अगर आप संदेश देना चाहोगे देश को क्या दोगे?
0: मैं देश को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी में हम हर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पढ़ाई में नहीं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, पढ़ाई है वो एक चीज है जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है, तो यही कहना चाहूंगा।
1: जब आपकी बात डिजिटल पर ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना चाहते हैं।
0: ऐसा कुछ मेरा नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं, मैं अपने मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। इस देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ है देश में, पुलिस से लोग डरते हैं किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे, ये डर। पुलिस का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। आप कहोगे कि कैसी बात कर रहा है, मैं जमीन बेच के दिखा दूंगा।

0: और क्या दिखाओगे मुझे, जमीन से पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो
1: मैं
0: जमीन पर
1: बता रहा
0: होता
1: हूँ,
0: है, जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी
1: नहीं झुग्गी
0: होती।
1: झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी स्लम में आई है, जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं उसकी उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं कलम अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो
0: तो आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है?
1: मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हो इस देश में राष्ट्र निर्माण में, उन लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के एक बेहतर भारत का संकल्प लें और बनाएं उसे।
0: गम क्या है?
1: गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा, हम तो दुख में ही खुश, दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं।
0: महीने दिन के कितने बना लेते हो वैसे?
1: मैंने 300-400 रुपये और क्या बनाएंगे, 300-400 रुपये। मैंने रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उनने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ऐसे ही मेरे जैसे परिवार से। फिर उनने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था, मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलियानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा था मैं।
0: राहुल गांधी को क्या कहा आपने?
1: राहुल गांधी को जी मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूरी, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, एक तो जमीन जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती की, हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए, तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे।
0: क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो? उनको क्या कहोगे आप?
1: पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी हैं कि नशा गांजा भांग दूसरा बिक रहा है, नहीं मानती है,
0: कहाँ बिक रहा है?
1: पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है, आप आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। आपका नार्कोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक बिकती है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए, मैं कहाँ जाता, तो
0: भ्रष्टाचार है,
1: भ्रष्टाचार है मतलब करप्शन है।
0: आपकी जिंदगी बदल जाएगी कल या वैसे की वैसे रहेगी?
1: वैसी रहेगी, मैं खुद को
0: वही
1: ना
0: उसी दुकान में,
1: उसी जगह पे उसी संघर्ष में और उसी तरीके से जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा।
0: तो जिंदगी क्या होनी चाहिए?
1: जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कफन में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले वो तेरे हाथ में।
0: थैंक यू।
1: Thank you, sir.
0: Irfan, who in a sense, as I said, became one of the faces of the protest at Jantar Mantar. That story, Irfan's story, is proof you don't often need a formal education to understand what life is truly about. You need to experience life itself. And that's why I think Irfan's words have struck such a chord. And that's the India that anyone in power also needs to reach out to and allow those voices to be truly heard. Having a dialogue is part of democracy, and dissent is not, repeat, not anti-national. Okay, let's take a break at this point. When we return, fresh monsoon damage puts infrastructure under scrutiny. In Dehradun, the approach road to a newly built bridge over the river has collapsed after heavy rain, cutting off a key route. Detailed story after a short break.

0: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
1: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: Which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच investigation मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट.

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है। जवाब मांग रही है। जवाब दीजिए। जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया पहले गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है।

0: लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। आप तो खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अहिंसा परम धर्म पे विश्वास ही नहीं है, जो भगवान महावीर ने दिया है, गांधी ने दिया है।
1: आपके लिए लोकतंत्र क्या मतलब?
0: लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के विचार गलतफहमियों को दूर करके एक साथ बैठते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, लोगों के विचारों से शासन चलता है, लोगों के विचारों से तो सब कुछ होता है।
1: फिर नीट नीट पर भी सवाल का जवाब देना होगा कि इतने पेपर लीक क्यों होते हैं देश में।
0: हर चीज का सवाल का सब मैं देखिए सर, हम सरकार जो सरकार लोकतंत्र में है, जनता जनार्दन है, आपको चुनती है आपके अपने देश की और लोगों की बेहतराई के लिए। जनता आपको किस लिए चुनती है कि देश हित में काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, देश लोगों से ही तो बनेगा।
1: आप किस स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं?
0: मैं स्कूल नहीं गया सर।
1: स्कूल नहीं गया तो ये कहाँ ये सब सीखा कि लोकतंत्र की जादू, लोकतंत्र में ताकत क्या है, इतनी अच्छी तरह से बोल कहाँ लेते हैं?
0: नहीं लोकतंत्र देखिए, जब हम जब मैं कहता
1: और आप तो हमसे डिबेट अच्छा करते हैं, आपने मेरी नौकरी लेनी चाहिए।
0: नहीं नहीं सर,
1: आपने एंकरिंग करनी चाहिए।
0: नहीं मैं एंकरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जब कहता हूँ कि
1: तो आप सभी पार्टी स्पोक्सपर्सन से अच्छे हैं।
0: देखिए सर, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को संविधान दिया तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही गई, सभी के जीवन में समानता होनी चाहिए, हर चीज को लेके, किसी एक चीज को लेके नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, संसाधनों को लेके। जब हम देखते हैं आज देखते हैं तो बड़ी आबादी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो हम कहेंगे, हम सवाल करेंगे। आप ही तो 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे, फिर अगर सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो हम पूछेंगे, तो फिर आप कुछ भी कहिए, हम पूछेंगे कि देश में हर साल NCERB का डाटा है 2024 का, 1,70,746 मौतें हुई हैं, प्रतिदिन 467, हर मिनट 3, और उनमें सबसे बड़ा नंबर है श्रमिकों का था, दिहाड़ी मजदूरों का था। हम बार बार पूछेंगे, आप इंटरनेशनल कहिए या कुछ कहिए, 19, 20, 21 में NCERB का डाटा है, 13,13,000 महिलाएं गायब हुई हैं, आपकी कमीज का बटन भी खो जाए तो वो मिल जाता है, और यहाँ जिंदे आदमी गायब हो गए, तो हम पूछेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे आपसे। ये लोकतंत्र है कि आपको सवालों का जवाब देना होगा, आप सवालों से भाग नहीं सकते।
1: तो कोई अगर आप संदेश देना चाहोगे देश को क्या दोगे?
0: मैं देश को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी में हम हर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पढ़ाई में नहीं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, पढ़ाई है वो एक चीज है जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है, तो यही कहना चाहूंगा।
1: जब आपकी बात डिजिटल पर ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना
0: नहीं
1: चाहते हैं।
0: ऐसा कुछ मेरा नहीं चाहिए, नहीं ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं, मैं अपने मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। इस देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं देश में, पुलिस से लोग डरते हैं किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे, ये डर। पुलिस का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। अब कहोगे कि कैसी बात कर रहा, मैं जमीन बेच के दिखा दूंगा।
1: और क्या दिखाओगे मुझे जमीन से? पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो जमीन पर होता है? जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी होती
0: है? झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी सलम में आई है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं उसकी उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं कलम अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो
1: आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है?
0: मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हो इस देश में, राष्ट्र निर्माण में उन लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के एक बेहतर भारत का संकल्प लें और बनाए उसे।
1: गम क्या है?
0: गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा, हम तो दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं।
1: महीने दिन के कितने बना लेते हो पैसे?
0: महीने 300-400 रुपए, और क्या बनाएंगे 300-400 रुपए। मैं रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उनने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी।

0: और वो ऐसे ही मेरे जैसे परिवार से, फिर उनने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलियानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा
1: राहुल गांधी को क्या कहा आपने?
0: मैं। राहुल गांधी को जी मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूर, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। एक तो जमीन, जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती कि हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए। तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे।
1: क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो, उनको क्या कहोगे आप?
0: पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी हैं कि नशा गांजा भांग दूसरा बिक रहा है, नहीं मानती है,
1: कहाँ बिक रहा है?
0: पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है। आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। आपके नार्कोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक बिकती है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए। मैं कहाँ जाता, तो
1: भ्रष्टाचार है,
0: भ्रष्टाचार है, मतलब करप्शन है।
1: आपकी जिंदगी बदल जाएगी कल या वैसे की वैसे रहेगी?
0: वैसी रहेगी, मैं खुद को
1: उसी दुकान में,
0: उसी जगह पे, उसी संघर्ष में और उसी तरीके से, जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा।
1: तो जिंदगी क्या होनी चाहिए?
0: जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कफन में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले वो तेरे हाथ में।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू सर।
1: इरफान, हु इन अ सेंस एज आई सेड बिकेम वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर।
3: दैट स्टोरी, इरफान स्टोरी इज प्रूफ यू डोंट ऑफन नीड अ फॉर्मल एजुकेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज ट्रूली अबाउट। You need to experience life itself. And that's why I think Irfan's words have struck such a chord. And that's the India that anyone in power also needs to reach out to and allow those voices to be truly heard. Having a dialogue is part of democracy. And dissent is not, repeat, not anti-national. Okay, let's take a break at this point. When we return, fresh monsoon damage puts infrastructure under scrutiny. In Dehradun, the approach road to a newly built bridge over the river has collapsed after heavy rain, cutting off a key route. Detailed story after a short break.

0: जब कहता हूं कि
1: तो आप सभी पार्टी स्पोक्स पर सबसे अच्छे हैं।
0: देखिए सर, लोकतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जब हमारे महापुरुषों ने इस देश को संविधान दिया तो सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही गई, सभी के जीवन में समानता होनी चाहिए हर चीज को लेके, किसी एक चीज को लेके नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके, संसाधनों को लेके। जब हम देखते हैं, आज देखते हैं तो बड़ी आबादी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो हम कहेंगे, हम सवाल करेंगे, आप ही तो 5 साल में आके हमें सपने दिखाते हैं सब कुछ बेहतर कर देंगे, फिर अगर सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो हम पूछेंगे, तो फिर आप कुछ भी कहिए। हम पूछेंगे कि देश में हर साल NCERB का डाटा है 2024 का, 1,70,746 मौतें हुई हैं, प्रतिदिन 467, हर मिनट 3, और उनमें सबसे बड़ा नंबर है श्रमिकों का था, दिहाड़ी मजदूरों का था। हम बार बार पूछेंगे, आप इंटरनेशनल कहिए या कुछ कहिए, 19, 20, 21 में NCERB का डाटा है, 13,13,000 महिलाएं गायब हुई हैं। आपकी कमीज का बटन भी खो जाए तो वो मिल जाता है, और यहाँ जिंदे आदमी गायब हो गए, तो हम पूछेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे आपसे। ये लोकतंत्र है कि आपको सवालों का जवाब देना होगा, आप सवालों से भाग नहीं सकते।
2: तो कोई अगर आप संदेश देना चाहोगे देश को, क्या दोगे?
0: मैं देश को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी में हम हर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पढ़ाई में नहीं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, पढ़ाई वो एक चीज है जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है, तो यही कहना चाहूंगा।
2: जब आपकी बात डिजिटल पर, ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे 2-3 दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना
0: नहीं
2: चाहते।
0: ऐसा कुछ मेरा नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं। मैं अपने मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। इस देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं देश में। पुलिस से लोग डरते हैं किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे, ये डर। पुलिस का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। अब कहोगे कि कैसी बात कर रहा, मैं जमीन पे चीजें दिखा दूंगा।
2: और क्या दिखाओगे मुझे जमीन से? पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो जमीन पर होता है? जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी
0: है? झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी सलम में आई है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं, उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं कलम अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो
2: आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है?
0: मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हैं इस देश में, राष्ट्र निर्माण में, उन लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक बेहतर भारत का संकल्प लें और बनाएं उसे।
2: गम क्या है?
0: गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा, हम तो दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं।
2: महीने दिन के कितने बना लेते हो पैसे?
0: महीने 300-400 रुपए, और क्या बनाएंगे 300-400 रुपए। मैं रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उन्होंने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ऐसे ही मेरे जैसे परिवार से। फिर उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा था मैं।
2: राहुल गांधी को क्या कहा आपने?
0: राहुल गांधी को मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूर, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। एक तो जमीन, जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती की, हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए? तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे।
2: क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो, उनको क्या कहोगे आप?
0: पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी है कि नशा गांजा भांग वगैरह बिक रहा है, नहीं मानती है।
2: कहाँ बिक रहा है?
0: पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है, आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे

0: जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। आपके नार्कोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए। मैं कहाँ जाता, तो
1: भ्रष्टाचार है,
0: भ्रष्टाचार है, मतलब करप्शन है।
2: आपकी जिंदगी बदल जाएगी कल या वैसे की वैसे रहेगी?
0: वैसी रहेगी, मैं खुद को
2: उसी दुकान में,
0: उसी जगह पे, उसी संघर्ष में और उसी तरीके से जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा।
1: तो जिंदगी क्या होनी चाहिए?
0: जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कफन में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले वो तेरे हाथ में।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू सर।
1: इरफान, who in a sense, as I said, became one of the faces of the protest at Jantar Mantar.
3: That story, Irfan's story, is proof you don't often need a formal education to understand what life is truly about. You need to experience life itself. And that's why I think Irfan's words have struck such a chord. And that's the India that anyone in power also needs to reach out to. And allow those voices to be truly heard. Having a dialogue is part of democracy. And dissent is not, repeat, not anti-national. Okay, let's take a break at this point. When we return, fresh monsoon damage puts infrastructure under scrutiny. In Dehradun, the approach road to a newly built bridge over the river has collapsed after heavy rain, cutting off a key route. Detailed story after a short break.

0: जो हमें और हमारे परिवार को, देश और समाज को बदल सकती है। तो यही कहना चाहूंगा।
1: जब आपकी बात डिजिटल पर, ललन टॉप पर सुनी गई, मेरे दो तीन दोस्तों ने फोन करके आपका नंबर मांगा और कहा हम उनको आर्थिक मदद देना
0: नहीं
1: चाहते
0: सर,
1: हैं।
0: ऐसा कुछ मेरा
1: नहीं चाहिए आपको?
0: नहीं, ऐसा कोई मेरा नजरिया नहीं। मैं अपने मेरे शब्दों के लिए मैं अपना जीवन नहीं बदलना चाहता। इस देश की बड़ी आबादी है, उसको आप बड़े पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं देश में। पुलिस से लोग डरते हैं, किस लिए? अगर आप पर्स चोरी हो गया ना तो थाने नहीं जा रहे, ये डर। पुलिस का सिस्टम तो इसीलिए बनाया गया था कि अंदरूनी सुरक्षा को पुलिस देखेगी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और सेना बाहर देखेगी। सेना अपना काम 100% कर रही है, पुलिस 99% करप्ट है। आप कहोगे कि कैसी बात कर रहा, मैं जमीन बेच के दिखा दूंगा।
1: और क्या दिखाओगे मुझे? जमीन से पुलिस दिखाओगे और क्या दिखाओगे जो जमीन पर होता है? जो हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं या कहीं अपने आलीशान महल में लोग बैठे हैं, वो क्या जानेंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी कैसी
0: होती है? झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रामीण भारत में आई है, शहरी सलम में आई है। जो देश की बड़ी आबादी है उसके जीवन को परखिए, किताबों में नहीं, उसकी उसकी आत्मा में घुसिए, उससे पूछिए क्या खुशी और क्या गम है। ये साहित्यकार ऐसे नहीं कलम अपनी कलमों को आवाज देते हैं और गूंगे के मुंह में जवान देते हैं, इसीलिए तो
1: आपके लिए क्या खुशी है और क्या गम है?
0: मैं खुश हूँ सर, मैं खुश हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप तमाम बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिल रहा हूँ, और अपनी अपनी जगह लोग सेवा दे रहे हैं इस देश में, राष्ट्र निर्माण में उन लोगों से मिल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के एक बेहतर भारत का संकल्प ले और बनाए उसे।
1: गम क्या है?
0: गम कुछ नहीं, गम तो जिंदगी में देखिए हम क्या कहते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमने खुशी को मेहमान की तरह भी नहीं देखा, हम तो दुख में ही हंसते हैं, दुख में ही रोते हैं।
1: मैंने दिन के कितने बना लेते हो वैसे?
0: मैं 300-400 रुपए, और क्या बनाएंगे 300-400 रुपए। मैंने रजत को बताया कि जंतर मंतर पे एक छात्र आया ग्रामीण भारत से, उनने मुझसे कहा कि इरफान मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने कहा शुक्रिया। फिर उसने बोला इरफान जैसे आपने कहा 500 रुपये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ऐसे ही मेरे जैसे परिवार से। फिर उनने कहा कि कनॉट प्लेस में मैं बड़ी दुकानों के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। मैंने कहा हम छोटे नहीं, हम पर्यावरण में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, ये तो पोल्यूशन में रहते हैं। उसको मन के बढ़ावा दे रहा था मैं।
1: राहुल गांधी को क्या कहा आपने?
0: राहुल गांधी को जी मैंने इस देश के श्रमिकों के बारे में कहा कि सर आप जब आएंगे तो इस देश में एक न्यूनतम मजदूरी, हर राज्य में एक श्रमिक कानून है, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। एक तो जमीन जो कागजों में वो जमीन पे मिलती नहीं है, ऊपर से उसमें भी कटौती की, हरियाणा यूपी वाले घास खा रहे हैं या बिहार वाले घास खा रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, दिल्ली में 18 तो वहाँ 13 किस लिए? तो पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी लाएंगे और लागू नहीं करेंगे, जमीन पे भी उसका असर दिखना चाहिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ भी जमीन पे आएंगे।
1: क्या कहेंगे अगर मोदी जी आपसे मिले तो, उनको क्या कहोगे आप?
0: पहले मैं मोदी जी से नहीं मिलूंगा, पहले मैं अमित शाह जी से मिलूंगा कि सर आपकी जो पुलिस है ना बड़ी लापरवाह है, कि हम कहते भी हैं कि नशा गांजा भांग दूसरा बिक रहा है, नहीं मानती है।
1: कहाँ बिक रहा है?
0: पूरी दिल्ली में बिक रहा है, हर केंद्र शासित प्रदेश में बिक रहा है। आपको नहीं भेजूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा, 12 साल के बच्चे को भेजूंगा, उसे मिल जाएगा लेकिन पुलिस को नहीं मिलेगा। आपके नार्कोटिक डिपार्टमेंट में मैंने 2 कंप्लेंट करी कि सर मेरी बस्ती में इसमें एक बिकती है, उन्होंने कार्रवाई भी करी लेकिन वो पैसे लेके चले गए। मैं कहां जाता? तो
1: भ्रष्टाचार है,
0: मतलब करप्शन है।
1: आपकी जिंदगी बदल जाएगी कल या वैसे की वैसे रहेगी?
0: वैसी रहेगी, मैं खुद को
1: उसी दुकान
0: उसी जगह पे उसी संघर्ष में और उसी तरीके से जो इस पागलपन में शामिल ना हुआ वो हर शख्स मारा जाएगा।
1: तो जिंदगी क्या होनी चाहिए?
0: जो करना है कर ले, दुनिया के चमन में मौका ना मिलेगा जब लिपट जाएगा कफन में। अच्छा कर ले या बुरा कर ले वो तेरे हाथ में।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू सर।
1: इरफान, हु इन अ सेंस एज आई सेड बिकेम वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। दैट स्टोरी, इरफान स्टोरी इज प्रूफ you don't often need a formal education to understand what life is truly about. You need to experience life itself. And that's why I think Irfan's words have struck such a chord. And that's the India that anyone in power also needs to reach out to and allow those voices to be truly heard. Having a dialogue is part of